0: connect your dream, connect your future, still connect your heart.
1: Connect Australian Education and Visa Services. शिक्षा गण्डकी चार तुलेगौड़ा वा इन डिपार्टमेंट भवन संगे मोबाइल 98562340 93 और 98562380 73।

0: 5
1: हेमन्त थापा गोदर रोलफिर्दी प्रगति टोल रु 50231
0: मोती प्रसाद भट्टराई केसु ढोरफिर्दी हिमाली टोल रु 21151
2: दिस इज रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज
3: 103.8 मेगाहर्ज प्रेजेंट एवरीडे 10:30 AM टु 12 PM
4: It's time for a calling time.
3: Only on Radio Dhurbarahi.

हेलो बाबू, सुनिए ना, आपकी शादी ना किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं हो रही है। हुस्न की मलिका बेहद खूबसूरत हीरोइन से हो रही है, तो आपको भी एकदम हीरो की तरह मस्त एकदम बाल बाल सेट करके हैंडसम हंक बन के आना। और हाँ, शादी के दिन ना मेरी सासू माँ को बोल के काला टीका लगवा लीजिएगा। हमारी जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए।

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो लाइट चेक
2: अहिले दिउँसोको 1 बज्यो।
1: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापावाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: कुम्मन जित्न सफल
1: ओम प्रोसर आभूषण सुनचादी पसल दुलेगौड़ा फिक्री बजार
2: आकर्षक तथा आधुनिक डिजाइन को घर गहना विवाह का सेटकै गहना खरीद बिक्री तथा साठ फेर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। वर्षौं देखि विश्वास दिएको ओम प्रोसन आभूषण सुनचाँदी पसल शुक्ला गण्डकी चार दुलेगौड़ा भित्री बजार प्रोपाइटर भोज बहादुर सुना
3: मोबाइल 9800 5350
4: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 MHz।

0: 103.8 अन्तर्मन को आवाज
1: स्टूडियो तालचेर अहिले रातिको 9 बज्यो टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: परेली संगीत कुंज प्रस्तुत गर्दछ।
1: ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड ध्वज।